0: कॉपरेटर रमेश।
1: Welcome back to Sarit Kaur Sahani, you're watching NDTV. Now, in a major legal setback for Shiv Sena co-operator Ramesh Mahatre, the Bombay High Court has cancelled the bail granted to him in the Dombivli doctor assault case and ordered him to surrender. Remember that NDTV constantly tracked every stage of the case from assault to the doctor's protest to even Mahatre's arrest, the grant of the bail and the legal challenge that eventually followed. The High Court has now intervened, revoking the bail and directing Mahatre to return to custody, marking a significant turn in the case. The court cited his earlier criminal records. The countdown to Mahatre's surrender at 5 p.m. has now begun. Well, the monsoon session is starting on Monday and the political temperature is already soaring. An all-party meeting today will set the tone. Now, the government has announced 5 new bills that will be introduced in the parliament during the upcoming monsoon session. Developments outside the parliament are reshaping the political landscape. TMC rebel member parliaments and the NCPI member parliaments have been invited for today's all-party meeting, with Kakoli Dastidar set to attend as the chief whip of the NCPI faction. Meanwhile, Lok Sabha Speaker has approved the merger of 6 Shiv Sena UBT rebel member parliaments, with Eknath Shinde-led Shiv Sena taking the party's total strength in the Lok Sabha to about 13 member parliaments.
2: जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे, और जो सांसदों की बात है, या पिछले 3-4 सालों में जितने लोग जुड़ रहे साथ में, एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है कि ये कमिटमेंट को पूरा करते हैं, विश्वास जो देते हैं विश्वास पूरा करते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर खुद के स्वार्थ के लिए हमारी शिवसेना ज्वाइन नहीं की है, तो आपको लगेगा ये झूठे। जो लोग आरोप करते हैं वो तो उनको पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि वहां पर लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा कि उनको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो लोग नहीं आए, उनको हम देंगे विकास निधि।
3: संसद की कुछ प्रथा परंपराएं होती है, कुछ अनुशासन नियम होते हैं, उन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसका सम्मान करते हुए, उसके तहत आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ने फैसला किया है, निर्णय लिया है, ये निर्णय पूर्णतः नियमों के तहत है।
4: 2026 में एक बार फिर हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, 6 सांसद चुरा लिए गए, और अब जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी है, इनका रोल भी आपसे छिपा नहीं है। हम कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, वहां समय लगता है, तारीख पे तारीख मिलती है। जब चुनाव आयोग के पास या लोकसभा स्पीकर के पास या गवर्नर के पास जाते हैं, तत्काल प्रभाव से हमारे खिलाफ आदेश आ जाता है। अब इस बार भी देखिए, हमारे सांसद जो चुराए गए या डकैती हुई, अब उनको बताया जा रहा है कि वो सब सज्जन है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के ही सांसद है, जबकि हमारे नाम पर चुन के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए।
1: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था अपना, जो बने जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, सैंक्चुअरी होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, 30 भी हरीश चटर्जी स्ट्रीट का सैंक्चुअरी से निकल ही नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, क्या हुआ है बंगाल का आवाम का मालूम है?
1: Well, it is a tribute from home before football's biggest night. Thousands gathered in Rosario, Lionel Messi's hometown, to unfurl a giant Argentina jersey carrying one simple message. Thank you, Leo. You're a massive legend. Now, the massive 18-by-12-meter jersey rose above the crowds as fans saluted the man chasing one final World Cup dream. With Argentina set to face Spain in the World Cup final, Messi stands one victory away from a fairy tale finish to his international career. While Spain are eyeing a second World Cup title, Argentina are chasing back-to-back World Cup crowns.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
2: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे ऑफ डोंबिवली। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
3: We learn that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
4: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
5: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो।
4: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
5: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
4: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
5: प्रशिक्षण हम हमारे
4: नहीं मांगेंगे
5: सर।
6: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
7: That if a boy from Ahmedabad, with no capital and no connections, could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
8: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद।
9: The news. Ayush, since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
10: Wow.
9: 4K. The works.
10: Where's the hook?
9: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
10: Where's the hook?
9: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
10: Bro, where's the hook?
9: Cross-platform. Digital first.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टर मसाला।
5: उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार, उसके दूसरे दिन दोनों ने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है।
6: एनडीटीवी ट्रेस्ड ईच एंड एवरी अफेक्टेड फैमिली and also visited multiple hospital wards.
7: NDTV had reported extensively on why are these deaths happening in Rajasthan.
8: Checked all the medications, the drugs, everything. We called AIIMS Jodhpur also to do an investigation on it.
9: Big NDTV impact when it comes to Rajasthan maternity deaths. NDTV coverage has now forced

0: So in that way, they did an injustice against Trinamool Congress.
1: What the what Kakoli Ghosh has stated, that they have already submitted papers to Lok Sabha Speaker. The petition has been submitted.
0: Whether they have legally did it, that is not done. Some here on the base of hearsay, we cannot take a decision. They have done an injustice, naked injustice, that is to be corrected. They have not done it, that's why we have expressed our protest.
2: Regular exercise, conventional, that before every sessions, the government will convene a meeting of all party leaders, floor leaders, and then they will discuss about how the house will be functioning and what are the bills that are to be taken up. And every party will express their issues which have to be raised on the floor of the house. And it has been long back a convention that the Prime Minister used to attend such meetings. Nowadays the Prime Minister doesn't turn up. Only the Defence Minister, for all the meetings, he only attends. But we have reposed our confidence that the Parliament will function democratically. Every party will express their views.
3: तमाम मुद्दे जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे जंतर मंदिर पर जो सोनम बागचू के साथ हुआ वो सवाल हो, चाहे मंदिर का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, वो तमाम मुद्दे जो इस समय देश के सामने हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन मुद्दों पर सरकार चर्चा कराए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जहाँ तक संसद चलाने का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। प्रतिपक्ष चाहता है कि देश के जो मुद्दे हैं उठें, वो सरकार से अपेक्षा करता है कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। तनाव जब पैदा होता है, जब जनजीवन से जुड़े हुए सवालों पर भी सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता।
4: Switching tracks now to the TMC crisis has just begun and has taken its biggest turn yet. On the eve of the monsoon session, we heard Speaker Om Birla was granted separate seating to the 20 rebel MPs who broke away from the TMC and announced their merger with the NCPI. Now, Abhishek Banerjee issued an open challenge to all the rebel MPs and the MLAs, daring them to come back to Mamta's camp and promising that he will resign within 24 hours if they do. TMC MP Derek O'Brien also jumped in and accused Speaker Om Birla of mocking over, referring to those 20 traitors as still being TMC MPs and them getting invites for the old party meeting that is underway. The battle over who represents the real TMC moves squarely into the Speaker's chambers.
5: BJP netara, BJP jhanda niye, gerua phetti mathay bede. গেরুয়া উত্তরীয় পড়ে মুখ ঢেকে সেই পার্টি অফিসে ঢুকে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে, এই সব ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। যদি ভাবেন যে বিজেপির নেতারা আমাদের বাঁচাবে, আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছেন, আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর, পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া, যে ধারায়, যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না।
6: আম কি পাও ট্যাঙ্কের মধ্যে কি আছে সেটা দেখতে হবে, সেটা আমি জানি না কি কি পেয়েছে না পেয়েছে। বাড়িটাই যেখানে ইলিগাল সেখানে ডেফিনেটলি ইলিগাল কাজকর্মই কিছু হতো।
7: নিন্দা করুঙ্গা কি অত্যাচার হয়, আনডেমোক্রেটিক হয়, ये तो किसी तरह से तृणमूल को हिट करने का कोशिश है।
8: आज बोले हैं, यस्टरडे क्या बोले थे? बोले थे जो लोग सब लुटेरा है, वो लुटेरा लोग डर के मारे ईडीआई सीबीआई डर के मारे चले गए। तो कल बोल रहे हैं लुटेरा लोग चले गए, तो फिर वही लुटेरा लोगों को बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। और देखिए जो हालत है, 4 तारीख जब चुनाव का नतीजा निकला मई महीने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। अपना जो बने जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, सैंक्चुअरी होता है, रिजर्व फॉरेस्ट होता है, 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट का सैंक्चुअरी से निकल ही नहीं रहे हैं। एक बार निकले थे, क्या हुआ है बंगाल का आवाम का मालूम है।
4: And switching tracks now, the political battle over the alleged Ram Temple fund theft has intensified. It is Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge of the Congress party that have written a letter to Prime Minister Modi demanding what they call an independent probe into the case. In the letter, the two leaders questioned the silence of the Prime Minister seeking a full public disclosure when it comes to the accounts of the trust and asking how devotees' offerings were used, and saying that those responsible

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
3: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
4: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this: the biggest stage, floodlights,
5: wow.
4: 4K, the works.

0: बात कही कि डिलिमिटेशन को लेकर हमारे राज्य में भी शंकाएं हैं, क्योंकि 2011 के सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन होगा तो बहुत सारे ट्राइबल सीट्स कम हो जाएंगे। इसको लेकर कई आदिवासी प्रतिनिधि हमारे पास आए हैं, ज्ञापन दिया है, तो हमने कहा कि पिछली बार महिला आरक्षण बिल को सामने रख के डिलिमिटेशन की बात कही गई थी। डिलिमिटेशन में जो आयोग, डिलिमिटेशन आयोग जो बन रहा है उसको लेकर भी संशय है कि भाई वो आयोग में जो लोग रहेंगे वो कितना न्याय कर पाएंगे।
1: सबसे ज्यादा जो सदर्न पार्टीज हैं डीएमके, इन लोगों ने विरोध ज्यादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सदर्न स्टेट्स इंपैक्ट होते हैं तो इसको नहीं लागू करना चाहिए। डीएमके का क्या कहना था ऑल पार्टी?
0: हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग में डीएमके प्लस और भी लोगों ने यही कहा कि जिस पर ज्यादा विरोध हो, ज़्यादा विरोध हो उसको नहीं पारित करना चाहिए। सबकी राय लेकर सर्वसम्मति से ही बिल को पारित करना चाहिए, ऐसा कई लोगों ने कहा।
1: और कौन कौन से बिल आने की आशंका है? कुछ गवर्नमेंट ने प्रपोजल
0: नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, एक लिस्ट निकला है उसमें कुछ बिल्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता है। हर बार देखा जाता है कि जो दिया हुआ रहता है ना उसे अलग हटकर भी कुछ बिल अचानक से रात में डाल दिए जाते हैं, वो हो ही सकता है, लेकिन उसके बारे में पहले से नहीं बताया जाता है कि लोग तैयारी करें। थैंक यू।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा एमपी महुआ माझी स्पीकिंग टू एनडीटीवी ओवर देयर क्लियरली स्टेटिंग दैट इट इज द गवर्नमेंट हु शुड मेक इट वेरी क्लियर एज टू व्हाट द बिल्स आर। रामदास अठावले ओवर हेयर क्लियरली अराइविंग आफ्टर द ऑल पार्टी मीटिंग। अठावले जी, क्या कुछ रहा ऑल पार्टी?
2: अरे मैं बोला नहीं, कुछ मैं बोला नहीं,
3: मैंने
2: उठाया था नहीं, अरे नहीं उठाया।
1: तो रामदास अठावले, देर ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम दी ऑल पार्टी मीटिंग, क्लियरली देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट इशूज दैट दी पॉलिटिकल पार्टीज हैव रेज्ड, स्पेसिफिकली द डीएमके हु हैड स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट शुड फर्स्ट क्लियर द first clear what is in the delimitation bill, and certainly after that it was the government who will maintain as to what will happen. Kiran Riju spoke after the all party meeting. Let's listen to what the Union Parliamentary Affairs Minister has to say.
4: 40 political party ka floor leaders ne all party meeting mein attend kiya hai aur sabne apna mat rakha hai। हमने शुरू से अपील किया, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत में अपील किया कि मानसून सत्र ऐसे समय में चल रहा है कि पश्चिम एशिया में भी लड़ाई चल रही है और बाकी गतिविधि है, तो उसका प्रभाव जो है भारत को भी होता है, तो ऐसे समय में सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर के देश के लिए अच्छा बात रखें और देश के लिए एकजुट होकर के हम काम करें, ये अपील किया। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट को रखा है, हमने सुना है, नोट किया है।
5: The concern is that Islamic Progress Party has been called to this meeting. The party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website. There is no scope for a separate block. Why have they been invited by
6: the party? आप हमारे बैठक पे जा रहे हैं?
5: हाँ।
7: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting, and we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
1: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
1: Are you saying that this has never happened in the past?
7: Never ever happened in any
8: affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of them.
0: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है, तो ये तो पूरे देश में हो रहा है। कोलकाता

0: में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है, अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है, इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है।
1: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था, पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
0: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना।
1: कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार,
0: ये तो अब अपोजिशन को बताए ये बात लिखकर अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है, अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे।
2: They did an injustice to Trinamool Congress. In the protocol, you know, they got a position. When they took some stand, pro stand of the NCPI, in that way, they have downgraded the position of the Trinamool Congress. So they objected that. We also all endorsed that view. That was the reason for the boycott.
1: Are you saying that this has never happened in the past?
2: Never. I have never, because there is a protocol kind of thing in that, no? Each party according to their strength, I got a status in the hierarchy. So in that way, they did an injustice against Trinamool Congress.
1: What Kakoli Ghosh has stated, that they have already submitted papers to Lok Sabha Speaker. The petition has been submitted.
2: Whether they have legally did it, that is not done. Some here on the base of hearsay, we cannot take a decision. They have done an injustice, naked injustice, that is to be corrected. They have not done it, that's why we have expressed our protest.
3: Limitation not yet discussed, that is not, I don't know whether it's coming. No, but what is coming or not, we don't know that. They are not in the list, we have seen that. It's not, no. What I am telling, it is not coming in the list. If at all come, then only I can give opinion. This is not the high time I can say on that time. When it is coming, we will see. My leader, Edappadi Palaniswami, whatever say, I will convey to all of you our ADMK stand.
4: Prem Chandran is not a member of DMK. I don't know what he said or why he said about that. But all what you are telling is true. What Mr. Balu said was, Women's Reservation Bill can be passed even with the existing number 543. And delimitation bill, government, what is going to do, we do not know, we are not aware of. It is no clear indication from the government. But any attempt which is to be made, if it affects the interest of the southern states, DMK will oppose it strongly. Our representation should not come down. Already we are at 8 of suffering. And in future, if the numbers increase in northern states, totally our saying will not be there in the vice president election or any bill that is passed, our say will just will be in the dip. And it will be dim. So in that case, earlier there was a meeting of the southern state chief minister in Chennai, headed by Mr. K. Stalin, in which we passed a resolution that it can be frozen
5: for 20 तमाम मुद्दे जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे जंतर मंदिर पर जो सोनम बागचू के साथ हुआ वो सवाल हो, चाहे मंदिर का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, वो तमाम मुद्दे जो इस समय देश के सामने हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन मुद्दों पर सरकार चर्चा कराए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जहाँ तक संसद चलाने का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। प्रतिपक्ष चाहता है कि देश के जो मुद्दे हैं उठें, वो सरकार से अपेक्षा करता है कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाए। तनाव जब पैदा होता है, जब जनजीवन से जुड़े हुए सवालों पर भी सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता।
6: अभी समय उन्होंने पब्लिश कर रहे हैं, हम नहीं अबेट करेगा। हम पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के ओपिनियन और उसको एडवाइस में नहीं हमारा काम कर रहे हैं। हमारा इंडिपेंडेंट है, दिस इज अवर डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को कुछ भी नहीं है, वो हमारा राइट है प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, नथिंग।
7: AI जनरेटेड फोटोज नहीं लाना चाहिए, पिछले सत्र में हंगामा हुआ था इस पर।
6: उसके बाद दैट्स एन अलग इशू है, डिफरेंट इशू है, बट इसमें पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को कोई काम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, वो स्पीकर का अधिकार होना चाहिए। It is not the parliamentary security service. Speaker have the authority to say so. Not the parliamentary security service.
7: आप अपना जैसे प्रदर्शन करते हैं सत्र में करते रहेंगे।
6: हाँ, करते रहेंगे, definitely.
8: Switching tracks now to Sonam Wangchuk's removal from the protest side has triggered a political storm. The opposition parties have questioned the action that's been taken by the government. The Congress is calling the

0: move anti-democratic. Samajwadi Party says that Swarnam Wangchuk was only following the path of Mahatma Gandhi. While the CPI said that authorities may detain a person, but they cannot detain the cause behind the movement. Swarnam Wangchuk has penned a letter from the Safdarjung Hospital, this is the government hospital in the national capital, calling his removal illegal detention. In a message that he has put out in his own handwriting, saying that his fight was for freedom from injustice and fear, and described the campaign as India's second freedom movement. In fact, his wife is now moving the High Court today in order to have him moved out to a private hospital instead.
1: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में. जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है. कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं. उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं. बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डर लाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है. सो उसका हम जांच कर रहे हैं लगातार. हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं, तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है. इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है.
2: रात को किसी को उठाकर पुलिस बल का प्रयोग कर इस प्रकार से जबरन ठूस देना जेल के अंदर, ये सरासर गलत है, ये प्रजातांत्रिक है, संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है और प्रजातंत्र का हनन है. ये कदापि प्रजातंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता. इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी और व्यक्तिगत तौर से मेरी ओर से भी मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूँ, इसका खंडन भी करता हूं और यह मांग करता हूं कि बगैर किसी शर्त के और देरी के श्री सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए और शांतिप्रिय तरीके से कानून के अनुरूप जो वो विरोध कर रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन करने की उन्हें इजाजत दी जाए.
3: कैन डिटेन ए सोनम वांगचुक, वन सोनम वांगचुक, बट द आइडियाज, द स्लोगन्स एंड द कॉज फॉर विच द स्ट्रगल बिगिंस, that cannot be detained. It will continue and we are sure they have to step down. Dharmendra Pradhan has to step down. Badlav jaruri hai.
4: Isse padar bhagya ka kya hoga ki Gandhi ke desh mein jo ahinsa ke aur ansan aur bhookha ta ke zariye angrezon ko bhagaya, उस देश में जो लोग उस समय अंग्रेज़ों को मुखबरी कर रहे थे कि शासन बन जाने के बाद उन्हीं गांधी के रास्ते पर चलने वाले सोनम वांगचुक को बात करने लायक नहीं समझा. पहले तो जेल में डाला था, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर छूटे और अभी अहिंसक शांतिपूर्वक धरने से पुलिस उठा कर लेकर चली गई. शर्म आती है कि गांधी के देश में कैसी भी सरकार होगी.
5: हाँ, जो वांगचुक जो हमारे लद्दाख के नेता हैं और उन्होंने मतलब जो अनशन शुरू किया है, कम से कम अभी 15-16 दिन या इतने कुछ दिन हो रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन देना ही चाहिए. इसी तरह की मांग जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है. मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने फौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जिन्होंने मतलब पेपर फूटे में जिनका संबंध उनको अरेस्ट कर दिया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन देने की आवश्यकता नहीं है और वांगचुक ने अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए.
0: Let's get you the latest when it comes to the escalation as far as the US and Iran is concerned. That's continuing to spiral, with Iran claiming fresh retaliatory drone strikes on two US military facilities in Kuwait. This has come about on the heels of the US airstrikes targeting Iranian military infrastructure. Tehran says it hit an ammunition depot at the Camp Al-Adiri and Patriot and surveillance radar systems at the Ali Al-Salim Air Base. Earlier it was President Trump had ordering fresh strikes after two US service members were killed in an Iranian missile and drone attack that took place in Jordan, warning of even bigger military action if Iran escalates this situation any further. Then we had Iran's Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei, who has said that Iran is fully prepared to respond, warning that the United States and its allies of unforgettable

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: The news,
1: Ayush. Since when do we do scripts?
0: Fair point.
1: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
0: Wow.
1: 4K. The works.
2: Where's the hook?
1: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
2: Where's the hook?
1: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
2: Bro, where's the hook?
1: Cross-platform, digital first, virality.
2: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
1: That's it. That's what we're looking for.
2: The best campaigns.
1: The hottest trends.
2: The smartest brand moves on our new show.
1: But wait, what do we call it?
2: The hook.
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
4: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
5: The eminent juries who are here and that itself speaks for.
6: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. And the big breaking news that's coming in at this point in time is over how the Delhi High Court has now upheld the government's decision to move activist Sona Wangchuk to Safdarjung Hospital, citing his worsening health after a prolonged hunger strike. Now, the court rejected claims of detention and rights violations, stating that Wangchuk remains a free citizen and even received treatment only with his consent. So, the Delhi High Court has backed the government and has said that Sona Wangchuk must remain in the government hospital. In fact, the news point here is that the Delhi High Court has said that there was no arbitrary move that had been taken by the government, and everything that was done keeping in mind the health condition of Sona Wangchuk. Here is a reaction that's coming in from Sona Wangchuk's wife and the advocate.
7: वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में। अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
8: We had come with very high hopes to the High Court because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देयर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टुडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज Ask them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहाँ का एटमोस्फेयर बहुत खराब है। There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
6: All right, Nupur Dogra is joining me live on the broadcast. On that note, Nupur, two big news points that I could take out from the court hearing was, number one, where the court said that the government action was not arbitrary and that there has been no detention of Shonam Wangchuk and everything was done keeping in mind his health updates. What are you picking up?
7: Well, yes, for the very first, the Delhi High Court has refused the request to in fact shift Sonam Wangchuk to a private hospital, which was in fact Gitanjali Ayyanur's prior prayer. However, it has given 3 days time to the government. It has sought the response from the government on whether he should be shifted to a private hospital or not. But for now, the High Court has said that there was nothing arbitrary about the move moving Sonam Wangchuk to the government hospital.
6: All right, Nupur, thank you very much for getting us those live updates from Jantar Mantar. With that, ladies and gentlemen, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and updates continue here on NDTV.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: We are over, जिमी।
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
6: so many attacks,
5: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right and Center.
5: Hard facts.
6: War struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar.
8: I am Mr.
6: Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV.
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
10: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
11: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
12: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
13: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
14: Humko haq हमारे पार्टी के बाल साहब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
13: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप?
14: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
13: इसका मतलब कि आगे जाके भी
14: सर,
13: अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
14: प्रशिक्षण हम हमारे
13: नहीं मांगेंगे
14: सर।
15: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
16: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
17: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
18: अरे मेरे राजा।
19: सबका राजा आकर मसाला।
1: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
2: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
4: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
3: We should be awarding companies and individuals who have

0: All right, some latest news coming in. Gitanjali Angmo to challenge the High Court order by the single judge bench today in front of the double judge bench. Senior advocate Vivek Tanka told NDTV that he will be filing a plea challenging today's order in front of the divisional bench of the High Court. We'll also seek urgent hearing tomorrow. This pertains to Wang Chuk's case. His wife is all set to challenge the order of the single judge. Nupur with us on the broadcast. Nupur, give us more perspective. What are the grounds on which they are challenging this before a division bench?
1: Well, Anusha, first of all, today the main prayer by Gitanjali Angmo, wife of Sonam Wangchuk, was that they want to shift him to a private hospital, Medanta. They said that there's no FIR against him, he's not under detention, and they want him to be treated by a doctor of their own choice in a hospital of their own choice. But the High Court said that even the High Court noted the submissions made by the government and noted there was severe threat to Sonam Wangchuk's life, noting that the potassium levels were dangerously low, and the High Court said that there was no arbitrariness involved in government moving Sonam Wangchuk to government hospital, and therefore it declined to grant any interim relief today. Now, against this very order of the High Court, Gitanjali Angmo will be moving a petition challenging this High Court single judge bench order before a double judge bench of the Delhi High Court, and they will also be pressing for an urgent hearing tomorrow on the same. Their prayer remains that they want Sonam Wangchuk to be shifted to a private hospital of their own choice.
0: A two-judge bench or a division bench, all set to hear the challenge filed by Sonam Wangchuk's wife to by the order of the single judge bench, the order that came. Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. The Delhi High Court refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit himself. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to see him. Wangchuk argued that the government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claimed that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
2: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी वो पोटेशियम 4.3 था बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे दैट्स नंबर वन नंबर टू अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे
3: वी हैड कम विद वेरी हाई होप्स टू द हाई कोर्ट बिकॉज़ द लार्जर क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन इज नॉट अंडर डिटेंशन अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है तो कोई रोक सकता है क्या ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा और हमारा ये कहना है हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा
4: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो बायोलॉज ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं लगातार। हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
0: In a major NDTV impact, the thug Neta Ramesh Matre has surrendered. His surrender comes just 2 days after NDTV's investigation and the coverage forced authorities to act. Matre turned himself into the police at Kalyan an hour before the deadline and was subsequently produced before the court. He has been sent to judicial custody till the 3rd of August. NDTV has been at the forefront tracking every update of the story, bringing you continuous coverage from the initial assault to today's surrender. The high-profile surrender occurred exactly 13 days after the violent attack took place. Inside the police station, NDTV confronted Matre, but he ducked our questions yet again.
5: मुझे थोड़ा सा अफसोस है आपको, आपने जो किया
6: बहुत हो गया।
5: बहुत हो गया, क्या हो गया सर? बहुत सर, मारपीट बहुत हो गया, क्या हो गया बहुत? रमेश सर, आपको अफसोस है आपने जो किया उसका? सर, एनडीटीवी पूछ रहे हैं कि आपने जो किया उसका आपको थोड़ा सा भी अफसोस है?
6: रमेश जी,
5: थोड़ा सा अफसोस है आपको?
7: देखो, हाई कोर्ट ने आज 5 बजे से सरेंडर होने के लिए कहा था। रमेश मात्रे जी आज कोर्ट में पुलिस स्टेशन में 3:30 बजे हाजिर हुए। उसके बाद कोर्ट में लाया गया, उनको 3 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में। महिला को 1 दिन का पीसीडी ग्रांट किया है। 22 तारीख को हम जाएंगे उधर और 22 तारीख को हमारा कहना उधर मान लिया।
5: Corporator Ramesh Matre has been brought here to the Harbari jail, and like you see today he's been sent to custody after his surrendering today at the Vishnu Nagar police station. Corporator Ramesh Matre exclusively on NDTV, like you see, after the doctor's assault case that blew up and NDTV's relentless coverage, Ramesh Matre was granted bail, but however his bail was rejected by taking suo motu cognizance, and today after again being presented in the court, Ramesh Matre has been sent to judicial custody again along with the 3 other accused in the case. He's doing some final paperwork after which he'll be sent. Sir, he kuch last baat bolenge aap? Well, Ramesh Matre heading back to Adharwadi jail. You see it in the 3rd of August, which is again because of him that the entire matter took a serious turn, wherein he first went to the KDMC hospital by stating that he wants a bed for reserve.

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
4: सो मेनी अटैक्स,
3: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right, and Center.
3: Hard facts.
5: War-struck country.
3: Hard questions.
5: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine.
7: In France, in Italy.
5: At Srinagar.
7: I am in France.
8: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom, only on NDTV.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाह मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा,
12: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम, वीकडेज एट 4 PM।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
13: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
14: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
15: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
16: It's also important that how they are reshaping the industries.
17: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
2: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
18: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।

0: देश का टायर, जेके टायर। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: We are over, जिमी।
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
4: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस, सो आई रिवाइंड, आई पॉज, आई रिफ्लेक्ट, आई डिग अंटिल व्हाट्स बरीड स्टैंड्स अप to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,

0: प्रोटीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आकर मसाला।
8: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious.

0: करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एक तंत्र आने वाला है, इसी का हम विरोध करते हैं। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है।
1: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था, पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
0: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना।
1: स्पीकर का कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार।
0: ये तो अब अपोजिशन को बताए ये बात लिखकर, अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है, अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे।
2: Limitation not yet discussed. That is not, I don't know whether it's coming. No, but what is coming or not, we don't know that. They are not in the list. We have seen that. It's not, no, no, no. What I am telling, it is not coming in the list. If at all come, then only I can give opinion. This is not the high time I can say on that time. When it is coming, we will see. My leader, Edappadi Palaniswami, whatever say, I will convey to all of you our ADMK stand.
3: Ramchandran is not a member of DMK. I don't know what he said or why he said about that. But all what you are telling is true. What Mr. Balu said was, women's reservation bill can be passed even with the existing number 543. And delimitation bill, government, what is going to do, we do not know. We are not aware of. It is no clear indication from the government. But any attempt which is to be made, if it affects the interest of the southern states, DMK will oppose it strongly. Our representation should not come down. Already we are at rate of suffering. And in future, if the numbers increase in northern states, totally our saying will not be there. The vice president election or any bill that is passed, our say will just will be in the dip. And it will be dimmed. So in that case, earlier there was a meeting of the Southern State Chief Minister in Chennai, headed by Mr. K. Stalin, in which we passed a resolution that it can be frozen for 24 days.
4: Now, the Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital in the national capital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. The judge stated that the government was well within its right. Wangchuk did not self-admit. His family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family, though, has been granted access to see him. Wangchuk argued that the government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers have claimed that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel at this moment.
5: वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में। अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
6: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। So today High Court has heard both sides. It has passed a long order.

0: देश का टायर, जेके टायर। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
4: व्हाट सीम्स सेटल्ड फॉर मी इज अनफिनिश्ड बिजनेस। सो आई रिवाइंड, आई पॉज, आई रिफ्लेक्ट, आई डिग अंटिल व्हाट्स बरीड स्टैंड्स अप to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: That if a boy from Ahmedabad, with no capital and no...
11: Last month, a BBC investigation exposed the shocking availability of child pornography and child sexual abuse material in India, just a few clicks away on your favorite apps like Instagram and Telegram, apps we all use every day to chat, to scroll, and to share. But that was just the beginning, as it turned out. What you're about to watch tonight is the true extent of the rot. NDTV now goes further, uncovering the shocking scale at which child sexual abuse content, videos of sexual violence, and even footage of criminal gun culture are only a few clicks away on Instagram, Telegram, Facebook. This is an investigation every parent, every citizen, every young person, and every platform, and of course the government, must confront head on. Here's Bismith Askin with this NDTV special investigation.

0: प्रोटीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until

0: होगा जिमी।
1: hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
6: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
7: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
8: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
9: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
8: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
9: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
8: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
9: प्रशिक्षण हम हमारे
8: नहीं मांगेंगे
9: सर।
10: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
11: Launch control, 0 to 100.
12: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
13: This car makes no sense, yet it makes every sense.
0: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines.

0: होगा जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
3: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली। Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh M'hatre?
4: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
5: And joining me live from Mumbai is Ramesh M'hatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
6: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो।
5: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
6: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
5: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
6: प्रशिक्षण हम हमारे
5: नहीं मांगेंगे
6: सर।
7: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh M'hatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
8: Launch control, 0 to 100.

0: the rebel faction is invited for the meeting, and we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
1: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
0: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
1: Are you saying that this has never happened in the past?
0: Never ever happened in any
2: country. Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the
3: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है. लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
1: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था. पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
3: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
1: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार.
3: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर. अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है. अगर उनकी तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
4: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
5: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं. और ये है, उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे.
6: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा. और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बींग मिस इंटरप्रिटेड. There is no such order of the High Court to detain me. And there can be no detention, even whether I am sick or not sick, if there is no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. Usme unhone bahut sari baatein boli hain. High Court has asked them to also share reports with her. Humne ye bhi complain ki sahab, wahan ka atmosphere bahut kharab hai. there are 30 policemen standing near or outside his room, 100 policemen standing in the ground floor or some place, जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा.
7: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में. जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है. कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं. उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं. बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है. सो उसका हम जांच कर रहे हैं लगातार. हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है. इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है.
4: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna's controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
8: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ ಒತ್ಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ ಹೇಳ್ದ.
9: ವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಪೊಲಜೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್.
10: ಆಫ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರೇಜನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೋಜಿನಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ದ ಬಿಡಾರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, in order to take away the farmers' lands, agricultural lands, at the cost of the environment, at the cost of the people, to benefit the real estate mafia. And when BJP protests, then they use the most sexist, misogynistic comments against Shobha Karandlaje. A Congress MLA says that this project was started by her yajman. This is the most unbecoming, shocking, disgusting comment to make at women in politics.
4: Torrential rain triggered a flash flood in J&K's Rajouri, causing widespread disruption. Dramatic visuals show powerful flood water sweeping away several vehicles as roads turned into fast-moving streams. One person has been killed in Jammu and Kashmir flash flood. Local authorities have urged residents to avoid flood-prone stretches and follow safety advisories. Officials continue to monitor the situation as water levels remain a concern following heavy rainfall. My colleague Pradeep Datta gets you these ground reports.
11: Pictures around me tell you the story of death, destruction and devastation caused by flash flood triggered by overnight torrential rain here in Rajouri and Poonch district. Here right now I am in Rajouri town and you can see how the flash flood had inundated this area. Many of these vehicles are lying topsy-turvy. Some of them had turned turtle. Some of them are submerged inside debris. And loss of life is also reported from Rajouri town. One woman lost her life when nearby slum area was wiped out by gushing stream of water. It was at about 3:30 a.m. today morning when a river broke its bank and inundated low-lying area. After that, you can see what the gushing stream of water caused here. See, most of the vehicles are lying mangled, damaged, and can't be of any use to people. And here you can see the way the wheel of this vehicle is jammed. It can't move. The same way life here has come to standstill. Many of the houses are damaged. Some shops are damaged. And same is the story reported from Surankot, Bafliyas and other areas in border district of Poonch, where some people have lost their lives because of this flash flood. But despite so many problem people here are trying to clean their shops. They are

0: political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
1: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
0: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
1: Are you saying that this has never happened in the past?
0: Never ever happened in any country.
2: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yeah. The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
3: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है. लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं
1: है. को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था. पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
3: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
1: कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार.
3: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर. अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है, अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
4: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
5: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं. और ये है, उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे.
6: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा. और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बींग मिस इंटरप्रेटेड. देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी. सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स. इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है. देर आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड इज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इनने मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
7: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे

0: who are part of the SIT investigation team. That is the officers who are investigating the Ram Mandir embezzlement case. Their details are also sought by the Supreme Court. The Supreme Court bench headed by Chief Justice of India, Surya Kant, will be going through this sealed cover report filed by SIT, and depending on that, it will decide that what it wants to do next. Remember, several petitions are filed in the Supreme Court. Some of them seek CBI probe. Some of them seek a transfer of the probe from outside the state, that is away from the SIT and with an independent investigation agency. One petition also seeks CAG audit of the finances of the Ram Mandir Trust. So there are several prayers in several petitions that have piled up in the top court. It will be important to see that what happens tomorrow.
1: Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more. And talking about the monsoon session of the parliament, the monsoon session is set for a stormy start, with the government and the opposition clashing even before the parliament convenes. An all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh briefly saw the opposition walk out in protest over the invitation to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर in the parliament house. That has been decided by the honorable speaker. And each one of us have been intimated separately that what was our previous division number and what is now the new number allotted to us. So all questions regarding recognition by the speaker, even which reflected to aaj subah sarvadaliya baithak mein bhi hua tha. सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था, हम लोगों को क्यों बुलाए. तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाई
5: जी,
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया, डिवीजन नंबर दे दिया, और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए, हम लोग डील खुल के
5: आप समर्थन करेंगे.
6: The concern is that Islamic Organized Party has been called to this meeting. A party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website. There is no scope for a separate block. Why have they been invited by
5: the party? आप हमारा बैठक पे जा रहे
7: हैं? It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting, and we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
8: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
8: Are you saying that this has never happened in the past?
7: Never ever happened in any country.
9: affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? Yes. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
10: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है। तो ये तो पूरे देश में हो रहा है। कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है। अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है, लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है। इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है।
8: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था, पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
10: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना।
8: स्पीकर का कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार।
10: ये तो अब अपोजिशन को बताए ये बात लिखकर, अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है। अगर उनकी तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे।
1: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
11: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में। अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
12: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज ask them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है। There are 30 policemen standing near or outside his room, 100 policemen standing in the ground floor or some place, जैसा इन्हें मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
13: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा अबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जाँच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यू

0: The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wang Chuk did not self-admit. Wang Chuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wang Chuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wang Chuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
1: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में। अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं। और ये है, उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
2: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बींग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
3: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा अबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
0: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
4: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ

0: to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing them.
1: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
2: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
1: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be
2: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
3: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर इन द पार्लियामेंट हाउस दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल स्पीकर एंड ईच वन ऑफ अस हैव बीन इंटीमेटेड सेपरेटली दैट व्हाट वाज आवर प्रीवियस डिवीजन नंबर एंड व्हाट इज नाउ द न्यू नंबर अलॉटेड टू अस सो ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिकॉग्निशन बाय द स्पीकर Even which reflected जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था हम लोगों को क्यों बुलाए तो आज के बाद ये प्रश्नकाल और नहीं उठ पाए
4: जी
3: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया डिविजन नंबर दे दिया और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
4: आप समर्थन
5: करेंगे
6: It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting. And we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
7: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
6: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
7: Are you saying that this has never happened in the past?
6: Never ever happened in any country.
8: Is granted to them. Where is that term in the books of law? Yeah. This schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way.
9: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है तो ये तो पूरे देश में हो रहा है कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं ये लोकतंत्र है लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एकतंत्र आने वाला है इसी का हम विरोध करते हैं क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है
7: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
9: है लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना
7: तो कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं उनका
9: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे
0: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuck to a private hospital. Wangchuck will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuck did not self-admit. Wangchuck's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuck argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuck has no access to his own doctors or the legal counsel.
4: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में। अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है, कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
5: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बींग मिस इंटरप्रेटेड। देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी। सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स, इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं। हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर। हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है। दे आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड हिज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इन्होंने मुझे बताया। तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
10: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वे एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं, लगातार हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
0: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna's controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
11: Mehmanan babat kusato sobaka ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ ಅವ್ರ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದು ಶೋಭಕ್ ಅವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶೋಭಕ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ ಒತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ್ಡ ಹೇಳ್ದ.
12: Well, it is now in the village like

0: And this is about the Ram Mandir donation theft probe. The SIT has filed a status report. The UP SIT submits a status report to the Supreme Court. This SIT status report submitted in a sealed cover. The top court is set to hear the donation theft case tomorrow. Solicitor General Tushar Mehta to appear for the UP government. And that's the word coming in. My colleague Nupur is joining us on the broadcast to give us more perspective on the story. Nupur, give us more details. What is expected tomorrow?
1: Well, Anusha, if you remember, last Monday, the Supreme Court had in fact issued notice to the Ram Mandir Trust, and it had also directed the UP SIT to file a status report of the investigation in a sealed cover in a court. It had also sought details about the people who are part of the SIT investigation team, that is the officers who are investigating the Ram Mandir embezzlement case. Their details are also sought by the Supreme Court. The Supreme Court bench headed by Chief Justice of India Surya Kant will be going through this sealed cover report filed by SIT, and depending on that, it will decide that what it wants to do next. Remember, several petitions are filed in the Supreme Court. Some of them seek CBI probe, some of them seek a transfer of the probe from outside the state, that is away from the SIT and with an independent investigation agency. One petition also seeks CAG audit of the finances of the Ram Mandir Trust. So there are several prayers in several petitions that have piled up in the top court. It will be important to see that what happens tomorrow.
0: Thank you, Nupur, for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you for more. And talking about the monsoon session of the parliament, the monsoon session is set for a stormy start, with the government and the opposition clashing even before the parliament convenes. An all-party meeting chaired by Defence Minister Rajnath Singh briefly saw the opposition walk out in protest over the invitation to the NCPI MPs, the faction comprising TMC rebel MPs. The opposition later returned to the meeting after its symbolic protest. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to all parties to ensure the monsoon session runs smoothly and urged the opposition to avoid disruptions. DMK questioned Prime Minister Modi's absence from all-party meeting, saying it was once a long-standing convention for the Prime Minister to chair such meeting, but now it's the Defence Minister who's chairing them.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
2: So you have also urged the opposition MPs not to create chaos. Parliamentary smooth democracy should be there.
3: Ha, bilkul. We should run the house smoothly.
4: हम लोगों को जो सबसे बड़ा विषय थे हमारे प्रेस डिवीजन नंबर In the Parliament House, that has been decided by the Honorable Speaker, and each one of us have been intimated separately that what was our previous division number and what is now the new number allotted to us. So all questions regarding recognition by the Speaker, even which reflected जो आज सुबह सर्वदलीय बैठक में भी हुआ था, ये सब विरोधी दल वॉकआउट कर दिया था, हम लोगों को क्यों बुलाए. तो आज के बाद ये प्रश्न काल और नहीं उठ पाए
5: जी,
4: क्योंकि स्पीकर स्वीकृति दे दिया, डिवीजन नंबर दे दिया, और हम लोग भी ये सिद्धांत किया कि हर विषय पर चर्चा में हम लोग भाग लेंगे, एनडीए को साथ रहेंगे और बंगाल की उन्नयन और उसको साथ देश को उन्नयन पे जो जो तरीका से एनडीए को साथ देना चाहिए हम लोग डील खुल के
5: आप समर्थन करेंगे.
6: The concern is that Islamic organized party has been called to this meeting. The party which has not been recognized by the speaker, whose name does not appear on the website, there is no scope for a separate block. Why have they been invited by
5: the party? आप हमारे बैठक में जा रहे
7: हैं? It's a matter of integrity of the opposition that when a petition, when a representations are pending with the speaker with regard to the split of a party, the rebel faction is invited for the meeting, and we feel that it's a miscarriage of justice. And when Trinamool Congress pointed out regarding the invitation extended to the rebel faction, we all expressed our strong protest with regard to the complete utter disregard to the institution of political parties and opposition. As a token of protest, we all have walked out.
2: Sir, Kakoli Ghosh clearly stating that the decision is still pending with the Lok Sabha Speaker. They are going to submit the papers specifically.
7: They are going to submit. Has the Speaker taken a decision about that? Speaker has adjudicated on other parties like Shinde, Shiv Sena, etc. Speaker is yet to take a decision on this TMC split. When the Speaker's decision is pending, it's grossly unfair on the part of the government to invite the rebel faction for the meeting.
2: Are you saying that this has never happened in the past?
7: Never ever happened in any
3: country. Is granted to them. Where is that term in the books of law? The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of them.
8: यहाँ पे आपने देखा कि महाराष्ट्र से बगावत करने वाले सांसदों को किस तरह से इनवाइट किया गया, जबकि अभी तक स्पीकर ने उन्हें मान्यता ही नहीं दी है. तो ये तो पूरे देश में हो रहा है. कोलकाता में टीएमसी को तोड़ा गया और भी राज्यों में तोड़ा जा रहा है. अगर इसका विरोध नहीं करेगी विपक्ष तो कानून को बिल्कुल साइड करके कुछ भी आप मनमानी नहीं कर सकते हैं. ये लोकतंत्र है. लेकिन देश में जो कुछ चल रहा है इससे लग रहा है कि लोकतंत्र की बजाय अब एक तंत्र आने वाला है. इसी का हम विरोध करते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में उनको बिना कानूनी ये के बुलाना किसी भी तरह से मान्य नहीं है.
2: स्पीकर को तो लेकिन पत्र पहले से ही दे दिया गया था. पिटीशन जो सबमिट करी थी दोनों तरफ से वो उनके हाथों में
8: है, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है ना.
2: कहना है कि वो किसी भी पार्लियामेंट्री ग्रुप को बुला सकते हैं, उनका अधिकार.
8: ये तो अब अपोजिशन को बताएं ये बात लिखकर. अपोजिशन को जो लग रहा है उन्होंने किया है, अगर उनके तरफ से कोई सफाई है तो वो सफाई भी दे.
0: The Delhi High Court has refused the plea to transfer Sonam Wangchuk to a private hospital. Wangchuk will remain at the government-run Safdarjung Hospital for medical treatment. The court ruled that the government's shift was not an arbitrary action. Judges stated that the government was well within its rights since Wangchuk did not self-admit. Wangchuk's family questioned why no health tests were conducted at the protest site. The family has been granted unlimited access to meet him. Team Wangchuk argued that government move may allow forceful treatment against his will. Lawyers claim that Wangchuk has no access to his own doctors or the legal counsel.
9: तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया. लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं. उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी. अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी. वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए. आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं. वो तरीका होता है डेमोक्रेसी में. अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं. और ये है, उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में. और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे.
10: We had come with very high hopes to the High Court, because the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा. और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड. देर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट टू डिटेन मी, एंड देर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक इफ देर इज नो केस अगेंस्ट मी. सो टूडे हाईकोर्ट हैज हर्ड बोथ साइड्स. इट हैज पास्ड अ लॉन्ग ऑर्डर, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. हाईकोर्ट हैज आस्क देम टू ऑल्सो शेयर रिपोर्ट्स विथ हर. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहां का एटमोस्फेयर बहुत खराब है. देर आर 30 पुलिसमैन स्टैंडिंग नियर और आउटसाइड इज रूम, 100 पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फ्लोर सम प्लेस, जैसा इनने मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा?
11: हेल्थ अपडेट है श्री सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आप जानते हैं कल सुबह से हमारे साथ वह एडमिटेड है। कल के जैसे वे फुल्ली अलर्ट हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन सारे नॉर्मल हैं। बट उनके जो बायोलॉज ब्लड पैरामीटर्स हैं, जैसे जो लैब पैरामीटर्स हैं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बॉर्डरलाइन से नॉर्मल से थोड़ा कम है या ऊपर है। सो उसका हम जांच कर रहे हैं लगातार, हमारी तरफ से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर क्योंकि वो कमज़ोर हैं और अभी भी उपवास पे हैं, तो उनको लगातार मॉनिटरिंग और जांचों की ज़रूरत हो रही है। इसलिए हमारी जो कंबाइंड टीम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की और हमारी, हम सब की सहमति यही है कि वे भर्ती रहे, क्योंकि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ब्लड पैरामीटर्स अभी भी फुल्ली नॉर्मल नहीं है।
0: A political storm has erupted in Karnataka after Congress MLA H.C. Balakrishna's controversial remark targeting Union Minister Shobha Karanjale. Speaking on the proposed Bidadi Township project, Balakrishna claimed that the project was initiated during former CM B.S. Yediyurappa tenure and took a personal swipe at Karanjale by referring to Yediyurappa as her yajman, a Kannada term commonly used to mean husband. The remark has triggered a sharp political backlash. The BJP has slammed the Congress MLA, calling the comment sexist, derogatory, insult to a woman. The party has demanded an unconditional apology from the Congress and strict action against Balakrishna, accusing the ruling party of resorting to personal attacks out of frustration over BJP protests against the Bidadi Township project.
12: ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೋಬಕವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಾಪದ ಕೂಸಿದ್ ಒತ್ಪಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡ ಹೇಳ್ದ.
13: ವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೋಗೇಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅಪೊಲಜೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್.
14: ಆಫ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರೇಜನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೋಜಿನಿ ಬೈ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, ದ ಬಿದಾದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್, in order to take away the farmers' lands, agricultural lands, at the cost of the environment, at the cost of the people, to benefit the real estate mafia. And when BJP protests, then they use the most sexist, misogynistic comments against Shobha Karandlaje. A Congress MLA says that this project was started by her yajman. This is the most unbecoming, shocking, disgusting comment to make at women in politics.
0: Torrential rain triggered a flash flood in J&K's Rajouri, causing widespread disruption. Dramatic visuals show